आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।

बेलाडोना के बेलाडोना चारकोल ब्लीचर रवानी, यानी बेलाडोना ब्लीचर रवानी, बेलाडोना चारकोल ब्लीचर रवानी जानू नोर तरीडी साथे बेलाडोना के बेलाडोना टूथपेस्ट यानी बेलाडोना हर्बल टूथपेस्ट रवानी रेडी कना बेलाडोना एंटी हेयर फॉल शैम्पू यानी बेलाडोना रेगुलर शैम्पू रवानी हो दाती ने लावा जमुंग पा बेलाडोना के जमुंग बेलाडोना एंटी हेयर फॉल टॉनिक पा 10x फार्मूले से रवान दे आखिर तम जानू नुरी साथे हो पा बेलाडोना कॉस्मेटिक पाकिस्तान कंपनी की सपला नवी प्रोडक्ट्स पा नवी फार्मूले सरा पा तेज तरीन फार्मूले सरा रवान दी जी आयक दस्ता आगा जी न कही जी अगर दावे चीज जमा पा मख फालतू वीखते दी जमा पा मख गैर जरूरी वीखते दी जमा पा मख इजाफी वीखते दी जमा द लिप्स यूनि दुशुंड द पास वीखते दी कता सुदा वीखते खत्म हुई न बिल्कुल तासु कवले जी जी दे द पारा तासु जानते वाले सब जानता ले जी तासु बजानता अखले बेलाडोना विटामिन सी फेस वाश द पाकिस्तान दावा हित बेलाडोना विटामिन सी फेस वाश थे जी पदे के एटी सी एच फार्मूले शामिल रहा पदे के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तूजा शामिल दे पदे के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ओलियम जिक शामिल दे पदे के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अरिस्ट लूच शामिल दे फार्मुलेशन द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यो फेस वॉश की पेट्रोल पाकिस्तान के निष्ठा ने यो आरजी पी जनी ने कॉस्मेटिक्स वाला पी जनी न दे न सुख खबरदार दी और न ता नुमन सुख दकूले छी जी द पाकिस्तान वाहिद बेलाडोना विटामिन सी फेस वॉश दे जे अगर जी न कई जगह दवाई छी जमा प मख फालतू वीखत दे गैर जरूरी वीखत दे नरी वीखत दे और ज द खत्मोल वाड़म जी दे द पार बेलाडोना गोल्ड विटामिन सी फेस वॉश इस्तेमाल इंशाल्लाह दे सर बदा हुई दमक दगा फालतू वीख तो गैर जरूरी वीख तो दब मुकम्मल तो गबाने खत्म ही गिजी वको तासु कवले छे छे दखपल निज दे कॉस्मेटिक्स जनरल मेडिकल सोना सांत बेलाडोना वाले हो द बेलाडोना सरा बखपलो खाइस्तनो के लगन डी रजात इजाफा रा वाले जी बेलाडोना मेडिकेटेड दी बेलाडोना द मेडिकल द उसूलो मुताबिक तैयारी की तासु टोले लपकार दादा छे द मेडिकल द उसूलो मुताबिक तैयार छबी बेलाडोना सांत वाले हो द बेलाडोना सरा बखपलो खाइस्तनो के लगन डी रजात इजाफा रा वाले जी बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जी सुमरा प्रोडक्ट्स दी दा द खपल निजदे कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल सोना देर पर आसानी से रतासु तर लास्ट कोले शी जी

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी हुई हु कुचरता दग जवानको पवख बाने गम उनक लेशी नो प रारवान वक की दग जवान के स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नी द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नी पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और यवाज दाना द दग दानो चकम दागो नदी अगर हम पर मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दाने और दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।